0: चीज अविनाश बाबू,
1: आपका ये नाम है?
2: क्या नाम है आपका?
0: चीज अविनाश बाबू,
1: आपका ये नाम है?
2: क्या नाम है आपका?
0: चीज अविनाश बाबू,
1: आपका ये नाम है?

0: अच्छा
1: नाम तो सुना ही होगा डीजे अविनाश नखना बिजाप सोना का नाम तो सुना ही होगा डीजे अविनाश नखना बिजाप सोना का